इतिहास पेश करने का यत्न करांगे ते सारा कुछ जिथे जिथे गुरुदेव पातशाह गए और उन्होंने जेड़े जेड़े कौतक किए तुहाडे नाल नजर करन दा यत्न करांगे। खैर आओ आपां सुल्तानपुर की धरती दे उत्ते चलीए। गुरु प्यारे दुआबे दे जे आपां गल करिए ना, दो पंजाब बन गए ना, लहिंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब, और लहिंदे पंजाब दे विच साडा दिल रह गया, ननकाणा साडा उत्ते रह गया, साडा पंजा साहब उत्ते रह गया। हुण जे किते गुरु के सिख ने ननकाणा साहब जाना होवे ना, खास करके पंजाब चो, इत्थों तुहानू सहूलत है, तुसी इत्थों आराम नाल जा सकदे हो। जे किसी ने पंजाब चो जाना होवे ना, अनेकां तरह दीआं पाबंदियां ने उत्थे लग दित्तियां, वीजा पासपोर्ट इमीग्रेशन, ते जे तुसी जाओगे ना पंजा सत्ता दिनां वास्ते, ते कैदियां वांग जिदा कैदी लैके जांदे ना, ऐदा उन्हां उत्थे दर्शन करवाउण वास्ते लैके जांदे, ते बिलकुल गुरु प्यारिओ बार्डर तक विच छड के आउंदे आ वी किते इधर नूं होर तुसी उसे पासे ना जाओ। आ कुछ है हुण दुनिया दे हद बन्ने मेटण वाले धन गुरु नानक महाराज, सांझीवालता दा उपदेश देण वाले ओ दुनिया दे मालक, और उन्हां दे पैरोकारां नूं ही अपने उन्हां दे पावन अस्थानां तों सानूं वांझे करके रख दित्ता, हद्दां खिंच दित्तियां, बार्डर बना दित्ते गए, LOC बना दित्ती गई। गुरु प्यारिओ अरदासां करदे आ ना आपां सतगुरां दे चरणां दे विच कि सतगुरु जिहड़ियां गुरद्वारियां गुरधामां नूं पंथ तो विछोड़िया गया है तिना दे खुले दर्शन ददारे ते सेवा संभाल दा दान बख्शो। यह आप उन्हां ही गुरुद्वारियां दीआं अरदासां करदे, दाता जी कृपा कर दो दुनिया दे हद बंदे खत्म करके, ते तुहाडे पैरोकार तुहाडे गुरसिख तुहाडे उन्हां पावन पवित्र अस्थानां दे खुले दर्शन ददारे कर सकण। मैं गल कर रहा जादे गुरधाम धन गुरु नानक महाराज जी दे, जिदा करतारपुर है मगरले अपनी जिंदगी दे तकरीबन 18-19 साल उस करतारपुर दे विच गुजारदे ने, रावी दरिया के नाल परले पासे उत्थे कोरीडोर खोलण का यतन भी किया, लेकिन गुरु प्यारे सरकारां दीआं गलत पॉलिसियां, हाँ किसी होर धर्म का होंदा हो, किते होर दूसरे धर्मां दे बहु गिणती वालियां दा हुंदा, ते हुण तक पता नहीं किदां ओ फ्लाईओवर बने होने सी, लेकिन साडा ओ घट गिणती वालियां दा, ओ आजादी दीआं लड़ाईआं लड़न वालियां दा, इस करके साडे नाल इदां हो रिहा, उत्थे दजैगियां हो रहीआं। मैं बेनती कर रहा कि जिस सुल्तानपुर की आपां घटना सांझियां कर रहे ना, इत्थे बड़ियां सतगुरां दीआं घटनावां होईआं, और एक एक गल नूं तुहाडे नाल बरीकी दे नाल सांझा करन दा यतन करांगे। और इको ही गुरधाम है, इको ही पावन पवित्र अस्थान है चढ़दे पंजाब दे विच गुरु बाबा नानक जी का, जिथे उन्होंने अपने जिंदगी दे तकरीबन 15.5 साल गुजारे आ, 15.5 साल कोई थोड़े नहीं होंदे, और इसे ही जगह दे उत्ते गुरुदेव पातशाह एक सच की किरत करन दा उपदेश देंदे ने। हुण गुरु कह रहे किते गुरु महाराज दूजे साधां वांग मंडलियां बना के कल्ला रब रब वाहेगुरु कर नहीं सी आए, उन्होंने आख्या सी कि घाल खाए किस हथों दे, आप दी किरत कर, दसां नौहां दी किरत कर, और इहदे विचों जिहड़ा कोई तेरे लागे आंढ गुआंढ गरीब है ना, और उहनूं भी दे। गुरु प्यारिओ असीं ते बेनती करदे आ जे तुहानूं सतगुरां ने दित्ता ना, गुरु महाराज तुहानूं होर ज्यादा दवे, तुसीं पंजाब दे विच जिथे तुहाडे परिवार जिन्हां घरां दे लागिओ तुसीं उठ के आए हो, जां तुहाडे कोई रिश्तेदार जां साक संबंधी पंजाब दे विच है ना, उह पता है कि उह गुरसिख परिवार है और अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करा सकता, तो उन्होंने बच्चे अडोप्ट कर लिया करो, उन्होंने बच्चों की विद्या का पढ़ाई का तुम प्रबंध कर लवोंगे ना, उन्होंने खर्चा चक लोगे, तो धन गुरु महाराज थोड़े उत्ते मेहरबान हो जाएंगे। जिथे आप होर नजायज खर्चे करते हैं और उत्थे पंजाब वास्ते गुरसिखा के जेडे बच्चों उच्ची विद्या नहीं हासिल करवा सकते, ते तुहाडे कोई इत्थे साल दे कोई $500-700 दे नाल कोई बहुता फर्क नहीं पैना, कई बार न्याणे झाटी अड़ाड़ू दिंदे आ, ते गुरु महाराज कृपा करे जे तुसी उन्हां दे बच्चियां नूं सांभण दा यतन करोगे ते तुहाडे बच्चे भी तुहाडे कहने कर दे होणगे। ते ऐसियां अरदासां करदे आ कि धन गुरु नानक महाराज, उन्हां ने सच दी किरत कीती है, गल्लां नहीं कीतियां बई हक दी कमाई करिया करो जी, हक दी कमाई करके दसी है कि किवें 8-8, 10-10 घंटे उस स्टोर दे विच सरकारी स्टोर दे विच स्टोरकीपर बन के गुरु महाराज जी ने उत्ते कमाई कीती है, और हक सच दी कीती है। जदों पता लग गया सी ना कि इस मोदी खाने दे विच नवां मोदी आया, ते प्यारिओ लोकां दी दर असल सरकारी स्टोरां दे विचों लोकी इदां दे समें हुंदे सी वी उत्थों सौदे खरीदणों हट जांदे सी, कारण कि इत्थे कपड़े हुंदे आ, इत्थे तिन लै के ते जिन्ने पैसे लेने आ उदू घट सौदा दिता जांदा सी, 5 सिक ला दिते जांदे सी, साडे बजुर्गां नूं 5 सिकां दा पता है कि जिधरले पासे सौदा तोल के दिता जांदा उधरले पासे कोई ना कोई वट्टी उदां दी रख देनी, लैण सौदा जदों लैणा

0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अपने ख्यालों नूं संकोचा क्योंकि मेरा अपना वक्त जिन्ना सी वह समाप्त हो चुका है। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। साडे अति सत्कार योग ज्ञानी जी होनी बड़े प्यार वाले ने, प्यारियो विद्वान ने साडी कौम दे, ज्ञानी गुरमेल सिंह जी टोरंटो वाले, उन्होंने हुण अपना प्रोग्राम पेश करना। सो साडे स्टेज सैकटरी साहब साडे अति सत्कार योग, उम्र विच भावें छोटे ने पर बा कमाल साडी कौम दे विद्वान ने, इसे ही कला जिस ढाडी कला नूं गा रहे हैं ना, उसे ढाडी कला दे विच बड़े संपूर्ण ने, बड़ियां बरीकियां नूं, इतिहास दियां बरीकियां नूं जानदे। सो साडे अति सत्कार योग ज्ञानी गुरदेव सिंह जगदेव सिंह जी जांचक साहब। सो अगला प्रोग्राम जांचक साहब तुहानूं सरवण कराउणगे। सो ढाडी जत्थे तों होईआं भुल्लां दी खिमा बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
1: वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुसारी साध संगत जी, आप जी नूं ढाडी वारां द्वारा सतगुरु नानक देव महाराज जी दे अलौकिक जीवन प्रसंग सरवण करवा रहे सन। भाई साहब भाई बलवीर सिंह जी बिहारीपुर ते उहनां दा जथा, ज्ञानी जी होरां दा समुचे जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरु रहमत करन इसे तरह आउण वाले समें विच अपने दर घर दी सेवा लैंदे रहण। सो हुण समां होया है इतिहास दी कथा दा, कथा सरवण करवाउणगे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी टोरंटो वाले। आओ उन्हां पासों कथा सरवण करिए, और नाल ही आप जी नूं बेनती है कि कल नूं पंथ प्रसिद्ध विद्वान भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी आप जी नूं 7 बजे तो 8:30 बजे तक शाम गुरमत विचार सरवण करवाउणगे। सो आप जी ने वध चढ़ के कल अते परसों दोनों दिन हाजिरी भरनी, और चौथे तो 8 तरीक तो 8 सितंबर तो शब्द चौंकी शाम के वक्त समाप्ति तो बाद आरंभ होया करेगी। सो 11 तरीक नूं अखंड पाठ साहिब आरंभ होणगे, जिन्हां दे भोग 13 सितंबर नूं पैणगे मेन हाल विच। सो आप जी ने सारे प्रोग्रामां विच शिरकत करके लाहे लैण दी कृपालता करनी जी। आओ कथा सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

आया मेरे हिरदे रूपी झोली दे विच सेख फरीद खैर दीजे बंदगी। मेरे हिरदे विच नाम दा दान बख्शिश कर दियो।

दान देह प्रभ भन खिन में अवर खिन में अवर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु अचलज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गैर गंभीरो ऊंचो अगम पारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। ये कृपा तो सड़े आप ही कीती जे साध संगत दियां मोलक घड़ियां सतगुरु बख्शिश कीतियां ने ता साध संगत दियां मोलक घड़ियां द्वारे सुनी तुम्हारी बाणी तुहाडी अमृत बाणी सरवण करन दा सुभाग समा आप दी कृपा द्वारे प्राप्त होया है। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया

सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज शुक्र है प्यारे जी शुक्र है। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ अपने प्यारे जी दे दर ते फिर तो अपनिया हाजरियां लवाइए। सब वीर भैणा अपने हथ जोड़ो अपने नैणा नाल सतगुर प्यारे जी दे दर्शन करदे होए बड़े प्रेम बड़े सत्कार अदब दे नाल प्यारे जी नू सीस चुका के गज के

अजे तक जो पिछले चार पांच दिनों तो विचार चल रही उहदे विच बहुत हंकार दे बाबत बचन आए हैं। अच्छा की फिर यही रह गया है, निंदा ही रह गई साढ़े जीवन च, कि असी कदे भी उस दाते दे दर ते प्रवान नहीं होवांगे, कि असी इदा ही वांझे चले जावांगे, इदा दे प्रश्न आउंदे होणगे मन दे विच। पर नहीं प्यारियो, हुंदे हन जिहड़े इस प्यारे दे दर ते आके सतगुरु जी दे बोल कमाउंदे हन। ते अगली जिहड़ी वार है ये भी भाई गुरदास जी दी है, इहदा टॉपिक सरलेख वेखो, सफल सिख कौन है, सफल सिख कौन है। बहुत सीधे लफज हन, गाउण दे नाल ही समझ आ जाणगे। रीज ना गायो भाई, रीज ना गायो, कहिंदे

ലോക്ക് अक्सर असी ना बहुत चलाकियां च माफ करना महाराज ने सानू मूर्ख बनने लई वैसे क्या नहीं है ते गल नू गलत भी ना लेना पर कई गुरमुख कहंदे सब कुछ जानदे होए पता हुंदा अगला बंदा चलाकी करदा फिर भी चुप करदे रहा चुप ते सानू ये गल ना कालज च पढ़दे आ साडे पिता जी ने कही ही पुत किसे दे नाल धोखा ना करी सौ धोखे सह भावे लई हैरानी की गल उस उम्र च सानू इस गल की समझ नहीं सी आउंदी अज समझ तू एक धोखा किया किसी के नाल ते उस प्यारे दे दर तो धक्या गया समझ ला हुण नहीं परवान हो सकता अच्छा सौ धोखे तो झल ला वो प्यारा तेनू आप प्यार करना आएगा तेनू पता है तेरे नाल चलाकी हो रही है ठीक है बिजनेस चलाने कारोबार करने हैं असं ये नहीं कह रहे कि उत्थे इदां करो पर जीवन दे विच बहुत मौके होंदे हन बहुत मौके होंगे हूं भी मौका हो गया कैलगरी च भी ऑलरेडी हो गया कोई आया जिथे पता सी चलाकी कर दिया चल कोई गल नहीं चुप रह जाओ चुप रह जाओ चुप रह जाओ भला है कोई गल नहीं भरा किते ना किते कमाईए किते फेल हो भी जावांगे फिर कमावांगे क्यों जी डिग डिग के सवार होईदा ना प्यारे हो जिदन साइकिल चलाया सी पहले दिन से ला लिया सी अज भी बचन कमाउण दी कोशिश करांगे दो दिन चार दिन कमावांगे एक दिन फिर हार जावांगे फिर अरदास करांगे महाराज जी मैं डिग गया मेरे को शब्द नहीं कमाया गया फिर उठांगे फिर कमाउण दी कोशिश करांगे ते एक दिन सवार हो ही जावांगे एक दिन महाराज जी दा शब्द कमा ही लवांगे प्यारियो डिगण ते झोरा भी नहीं करना ते उदासी भी नहीं लियानी बस अरदास करनी दस देना प्यारे जी मैं कोशिश कर रहा सी डिग पिया फिर उठ के कपड़े झाड़ के साइकिल ते चढ़ जाइदा उदां ही अपने कर्म नूं छड्ड के पिछे पिछे छड के ते उसे वेले अगला नवा चंगा कर्म कमाउण लई तुर पैदा है वड्ढण आए मनुख आप तछाया।

वार है, समा संकोचवां है, आपां बस पढ़ लेने हाँ। ये एक जेड़ा मनुख जेड़ा सिख अपने आप नूं उस प्यारे दे दर ते भेंट कर देंदा है ना, वह अपनियां इच्छावां त्याग देंदा है। अच्छा जी, अहीं सिख बन के इच्छा ही कोई नहीं त्यागी अज तक, तो सिखी कहदी है? आपां सिख बन के अज तक इच्छा कोई नहीं त्यागी, अज तक एक भी चीज नहीं है जिहड़ी असीं उस प्यारे वास्ते त्यागण, जो मन आउंदा उह मानाइयां कर रहे हां, ते फिर भी उच्ची लम्मी बांह करके अपने आप नूं सिख कहा रहे। सिख दा जीवन किदां है? उस प्यारे दे दर ते भेट होके कहिंदे मुर्दा होए मुरीद ना गली होवणा। मुर्दा जिवें मुरदे दी कोई इच्छा नहीं हुंदी, इदां सिख अपने प्यारे दे दर ते, जिन्ने अज तक कदे घर जाके लिस्ट बना के वेख्यो, जिन्ने गुरमुख प्रवान होए इतिहास दे विच, उहनां सारिआं ने पंक्तियां कमाईआं हन। भाई मंझ जी लै लो, भाई बहलो जी लै लो, भाई आदम जी लै लो, जिन्हें गुरमुखां नूं, भाई कन्हैया जी लै लो, भाई उदय सिंह जी लै लो, भाई अनक सिंह जी, जिन्हें गुरमुखां दे आप जी ना पढ़ोगे प्यारे इतिहास च प्रमाण होए उन्हां सारिआं नूं, ते असीं कहिंदे इदां हो नहीं सकदा। अक्सर सानूं जदों घरां च जांदे आही मिलदा है, कहिंदे इदां हो नहीं सकदा, ना कर भाई, हुंदा है अज भी हुंदा है। मुर्दा होए मुरीद ना गली होवणा, साबर सिदक शहीद। हैरानी दी गल है, असी उस दिन ही शहीद मानते हैं ना जिदन आरे दे नाल कट्टे गए सी, क्यों जी? असी तो उस दिन शहीद मानते हैं ना, वह अपने प्यारे दे दर दे उत्ते इत्थों तक भेट हो चुके होंदे हन कि वह शहीद हो चुके हन प्यारे। उस तो बाद च वह इदा शरीर छड़ देन, ते उस तो बाद च बाबा बुढ़ा साहब जी बन। अच्छा, बाबा बुढ़ा साहब जी ते भाई मती दास जी च की फर्क है? कोई फर्क है? वह भी पूरे भेट, ते वह भी पूरे भेट। एक शरीर उन्हों शहादत मिल रही है, एक शरीर उदा ही जा रहा है, पर वह जिंदा सुनया जी, जिंदा शहीद, वह जिंदा शहीद महो चुके होंगे, वह ज्योंदे जी अपनिया आसा मनसा त्याग के अपने प्यारे दे दर ते प्रवान हो चुके होंगे। यह शहादत तो पहला की बात है। मुरदा होए मरीद ना गली होवना, साबर सिदक शहीद, भरम।

अग निर्मल नहीं है, अग मैला कर रही है, ते पानी कहिंदे धो रहा है। हंकारी भी मैल ही फैला रहा हुंदा है, ते गुरमुख उस मैल नूं धो रहा हुंदा है। फिर अगे

0: जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्तकाया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख बनाशन है, भगत वछल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अचुत है, कोर दुख्यंग अनक हत्यंग, जन्म दारिद्रंग महाविख्यादंग, मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक, जैसे पावक काष्ट पसमंग करोत, सोरठ महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे, राम नाम मन लागा, जमल जाए कर भागा, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूर्ण पुरख विदाता, रहाओ नानक प्रभ अविनाशी, ताकि सेव न बिरथी जासी, अनदक रह तेरे दासा, जप पूर्ण होई आसा, बिलावल महला पंजवा, ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई, चौ गिर्द हमारे रामकार, दुख लगै न पाई, सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, एक काले वलाई, रहाओ राख लिए तन रखनहार, सब ब्याद मिटाई, कह नाने कृपा पई, प्रभ पये सहाई, श्लोक जह साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू नह चुठ है, निकट न जाई हो दूत, श्लोक महला पंजवा, मन मह चितवो चितवनी, उद्यम करो उठ नीत, हर कीर्तन का आहरो, हर देहो नानक के मीत, राग सोहिला राग गौरी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीरत आखिया, करते का होए बिचारो, तित कर गावो सोहिला, सिवरे हो सृजन हारो, तुम गावो मेरे निरभाव का सोहिला, हवारी जित सोहिला, सदा सुख होए रहाओ, नित नित जीड़े संभालियन, देखेगा देवन हार, तेरे दाना कीमत ना पवै, तिस दाता कवन सुमार, संबत साहा लिखिया, मिलकर पाव हो तेल, देहो सज्जन असीसड़िया, ज्यो होवै साहिब स्यो मेल, घर घर एहो पहुंचा, सदरे नित पवन, सदन हारा सिमरिया, नानक से देह आवन, राग आसा महला पहला, छे कर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीर्त होए, सो कर राख वढाई तोए रहाओ, विसोय चसया करिया पहरा, थिटी वारी माहो हुआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस, राग तनाशरी महला पहला, गगन मैं थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए, भवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी राव, सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद बिबल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंड इव चलत मोही, सब मह जोत जोत है सोए, तिसके चानन सब मह चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत भावै सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लोभ दमनो, अन दुरो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देह नानक सारंको, होए जाते तेरे नाए वासा, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर पह परिया, मिल साधु खंडल खंडा हे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हल मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पन वड्डा हे, कर नंडौत पन वड्डा हे, रहाओ साकत हर साध न जान्या, तन अंतर होमे कंडा हे, ज्यो ज्यो चलह चबै दुख पाव है, जमकाल सह है सिर दंडा हे, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण भव खंडा हे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा हे, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला, ईहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला, औद कटै दन सरै नारे मन गुर मिल काज सुवारे, रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए पियावै एहो रस अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई बिहज हो हर गुर ते मन है बसेरा, निज कर महल पाहो सुख सहजे।

0: गुरु जी की फतेह।
1: दास बारी जियो पिंडो सब को नानको सब तेरी वडियाई बोलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरु अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करनों ने दिया वै ताए सब थाई होना जी सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज अमृत के दाते पंथ दे वाली सरबंस दाने चिट्टियां बाजा वाले शमशेरे बादर सब थाई होना जी सहाय दसा पाशियां के आत्म जोत जाति जोत परमेश्वर दा हिरदा स्वरूप जारा जूर हाजरा हजूर सर्वकला भरपूर नाम बाणी के बोझ काजू के जहाज हालत बुलत के रखे लो पलो दिसाए को तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दीदार वल ध्यान धर के बोलो जी। ही निमानिया दे मां नितानिया दे तां नियोटियों दी ओट न्यासरों का सदा गुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी दा कोटान कोट शुक्र है कुटान को शुक्र है जो कि अमृत वेले तू लैके हूं तक पावन तख्त सुबाई मन हो के सिख संगतां नूं खुले दर्शन दिदारे बख्शिश किते इस वक्त आप जी के पावन सुरूपां की सेवा 16 साल दे जाप होए बेअंत बेअंत भुल्लां होईआं कृपा करके बख्श लेना 4-5 दिन आप जी के पाणी अंदर बतीत होया है 4-5 रहन आई है सुखां दी बतीत करनी अमृत वेले दा जागना प्रेमा भगती अंतरात्मे सो जी बख्शी करनी पिता जी कृपा करो आप जी अपने सोहने सोहने आसना ते विराजमान हो संगतां नूं खुशियां बख्शिश करो जी सुख वे तेरा ही नाम जितावे नानक नाम तेरे भाणे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की

0: पाव सुख नेरे।
1: सगल थ्रेड को राजा दुखिया
0: आरका नाम जपत हुए सुखिया।
1: लाख करोरी बंदना परे
0: आरका नाम जपत निस्तर।
1: अनक माया रंग तिखना बजावे।

योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया अनक प्रकार की है बहु जतना शरीर कटाए होमे कर राती।

0: प्रसाद तार ऊपर सुख बसाए
1: प्रात मीत बनता संग
0: हसे जय प्रसाद पी वै शीतल जला
1: सुखदाई पवन पाप
0: जय प्रसाद पोगे सवरसा
1: सगल सामग्री संग साथ प्रसाद
0: दिने हस्त पाप करने तरसना
1: त्याग संग रचना
0: ऐसे दुख मूड अंध व्यापे
1: नानक आड़ लेहो।

0: चोर झूठ संग मचाए,
1: जो छिड़ना सो अस्तर कर्मा नहीं,
0: जो हो वसो दूर पराने,
1: छोट जाए तिसका श्रम कराए,
0: संग सहाय तिस पर रहे,
1: चंदन लेप उतारे तोए,
0: गर्दन प्रीत बसम संग होए,
1: अंधकूप में पतत बिखराल,
0: नाने काड ले ओ प्रभु दयाल,
1: करतूत पशु की मान जात,
0: लोक बचारा करे दिन रात,
1: बाहर पेख अंतर मल माया,
0: जब सनाई कष्ट करे शपाय,
1: बाहर ज्ञान त्यान स्नान,
0: अंतर व्यापे लोग स्वान,
1: अंतर अगन बाहर तन स्वा,
0: घर पाथर कैसे तेरे अथा,
1: जाके अंतर बसे प्रव्याप,
0: नानक तेजन सहज समाज,
1: सुनंदा कैसे मार्ग पावे,
0: कर के ले हो
1: कहां बजारत बुझे डोरा,
0: किस गई ये तो समझे पूरा,
1: कहां बिसन पद गावे गंग,
0: करे तो पी सर
1: कह पिंगल पर्वत पर पवन।

0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ध्याइए ध्यावन जोग
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै
1: से त्याग कत लुभावै
0: जय प्रसाद सुख से सोई जाय
1: मन आठ पैर ताका जस गावी
0: जय प्रसाद तू सब को माने
1: मुखता को जस रसन बखाने
0: जय प्रसाद तेरो रहता

0: जय प्रसाद तेरे ओला रहत
1: मानस को पावे हर हर जस कहत
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद टाके
1: मानसा नी पठाकर प्राप्त आगे
0: जय प्रसाद तुझको न पहुंचा
1: मन सा सा सिमरो प्रभु चे
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे
1: नानक ताकी भक्त करे
0: जय प्रसाद अपूखन पैरी जा
1: मन ते सिमरत को आलस कीजे
0: जय प्रसाद अस्वह तस्वारी
1: मन ते प्रभु को कबू ना विसारी
0: जय प्रसाद बाग मिलख थना
1: राग प्रोए प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई
1: उठे वैसा तिसे ते आए
0: जो एक लखन
1: यहां उहां नानक तेरी रखे।

0: मन सदा जुरे।
1: जय प्रसाद तू पावे साचे,
0: मन मेरे तू ता सिवराज।
1: जय प्रसाद सबकी गत होए,
0: नानक जाप जपे जप सोए।
1: आप जपाए जपे सो नाव,
0: आप गवाए सो हर।

0: संग जाने परमानंद,
1: साध के संग ना ही होता आप,
0: साध के संग तजे सब
1: आप, जाने साध बढ़ाई,
0: नानक साध प्रभु बने आई,
1: साध के संग न कबूतावे,
0: साध के संग सदा सुख पावे।

0: अमृत गुण गाए,
1: साध के संग सर्वथान गम,
0: नानक साध के संग सफल जनम,
1: साध के संग नहीं कच काल,
0: दर्शन भेट तोत निहाल,
1: साध के संग कुलू कतर,
0: साध के संग नरक पर हरे,
1: साध के संग

0: साथ के संग सुनो हर नाव, साथ के संग न मनते बिसराए, साथ के संग लगे प्रमीठा,
1: साधु के संग काट काटीठा,
0: साथ संग पे आज्ञाकारी, साथ के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साथ पेटे संजोग,
0: साथ की महिमा वेद न जान है, साथ की उपमा ते गुण ते दूर,
1: साथ की उपमा रही भरपूर।

ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतरो समान ब्रह्म ज्ञानी उचते ऊंचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी ना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया ब्रह्म ज्ञानी सदा

0: कोड राजे रसभोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प पाए,
0: कई कोट पातर बिरख ने बजाए,
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर,
0: कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट शशि अर सूर नक्षत्र,
0: कई कोट देव दान इंद्र से शतर,
1: सगल समय

कर हर कर्म श्रवण हर कथा कृपा कीते जन जग माहे राम नाम जो करे विचारे मंतन मुख बोले हर मुखे।

0: नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो।
1: वाजे पंच शब्द कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया।
0: पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया।
1: दुर्गर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर कह लागे।
0: कहे नानक तह सुख हुआ तित।

अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सूही महला पहला।

राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग भैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुन्याकी गावै बंगली पुन असलेखी की पही बारी ए भैरो की पंचो नारी पंचम हर्ख दिसाख सुनावै बंगालम माध माधव गावै ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गावै गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पंचो थाप है गोंड करी आर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनाश्री ए पंचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उबारा खौ खट पोहरा नद गाए अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत उठह तान कलोल गायन तार मिलावही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमा नंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सोहाए सरस बान ओ आहे बिनोदा गावै सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी ओ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा।

नाग के गुंड कुंभ हमीर खस्तम मेघ राग वह गाव है पंचो संग बरंगन लाव है सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गाव है आशा गुनगुनी ऊचे सुर सूहो पुन कीनी मेघ राग स्यो पंचो चीनी बैरा धार गज धर के दारा जबली धार नाट्यो जल धारा पुन गाव संकर ओ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह।

प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया

मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, करता तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिस दी आए वडे आईया, कह नानक सुनो संतो, शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द, तित कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिनको, से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ, तित कार अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उत्तर।

संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रह।

रहत दान बबेक दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे भुंगे जुगो जुग अटल

आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो।

आशा मनसा सगल पूरी, प्रिय अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सुख सुखेदी, सा मैं गुरमिल पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

संगत प्यार विच हाजरी लाओ। वाहिगुरु वाहिगुरु। सारी संगत बुलंद आवाज विच आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हो, शहीदी दिहाड़ा। सत्कार योग भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा, हाजरी लगेगी प्यार विच अंदरों भिज के। वाहिगुरु

प्यारे सतगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सोहणे सतगुरु जी सोहणे सतगुरां दे दरबार सतगुरु जी दियां सजियां होईयां प्यारियां प्यारियां संगतां आओ प्यारियो सतगुरु जी नूं नमस्कार करिए। सब अपने हथ जोड़ो जी अपने नैणां नाल सतगुर प्यारे जी दे दर्शन करदे होए बड़े प्रेम अदब सत्कार दे नाल सीस चुका के

0: प्यारी साध संगत जीओ, महाराज तरस करन साडे अंदरों, आप जी दे अंदरों ये होमे नू मार पजाउण। सतगुर प्यारे जी ने तरस कीता है, इस कीड़े नू अपनी सेवा चलाया, आ पातशाही बख्शी है जो आप जी संगतां दे विच इदां बिठाउंदे हन। प्यारे सतगुरु जी, प्यारे सतगुरु जी ने तरस करके सारे पंजाब दी यात्रा कराई, भारत देश दे बहुत सारे स्थानां च, पाकिस्तान विदेश दे विच। ओ वीडियो आप जी महाराज जी दे प्रेम सदका चैनल निशान सिंह आस्ट्रेलिया ते जाके देख सकते हो। प्यारियो, घरां दे विच बच्चियां नू कार्टून दिखाउणे बंद करो, बच्चे कार्टूना वर्गे हो चले आ। गुरु ते आ सुनाया करो, नहीं समझावे नाल सुन के फिर समझाया करो अपने बच्चियां नू। अपने प्यारे प्यारे बच्चे जिहड़ी सब तो अमोलक दात है, उन्हां नू अपने कलगी धर जी दे चरणां नाल जोड़ दईए। अज कल ते जो समा आ गया है, सानू ते इदां लगदा है कि जे कोई मां प्यो अपने बच्चियां नू कलगी धर जी दे नाल जोड़ गया ना, उस मां प्यो नू भी सचखंड मिल जाणा है। कहना इस कलयुग च जोड़ आया पुत, जिथे 99 घरां दे बच्चे उजड़ रहे सी, तू जोड़ आया। आ पुत, मेरा दिल करदा है तेनू जफी पावां। आओ उस प्यारे दा शुकराना करिए। महाराज जीआं ने 6 दिन सेवा लई है, ते महाराज जी ने बड़ा तरस कीता है। प्यारे, असीं कोई प्रचारक नहीं है, कोई भुल हो गई होवे माफ कर देना। हे प्यारे सतगुरु, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, हे प्यार भरी मूरत, सदा अपना प्यार बख्शदे रहना। हे सतगुरु जीओ, थोड़े दिनों तो आप जी दे चरण परसदे आया, आप जी दियां प्यारियां संगतां दी सेवा करदियां भुल्लां हो गईयां, आप जी ने मुआफ कर देनियां। सदा बख्शेंद पिता जी मुआफ कर दियो, तरस कीता आप जी ने, ये बोल बख्शे, ये रसना बख्शी, ये श्रवण बख्शे, ये स्रोत बख्शी, सानू सभना नू बोलिया सुनिया कमाउण दा बल उद्दम बख्शना। प्यारे सतगुरु जी, जिन्हां वीरां ने, जिन्हां प्रबंधकां ने ये उपराला कीता, आप जी दे दर्शन होए, संगत दे दर्शन होए, उन्हां वीरां प्रबंधकां नू अपना प्रेम बख्शना, अपनी गल वकड़ी बख्शनी, प्रबंध नू होर वधेरे चढ़दी कला दे नाल आप जी दी सेवा नू कमाउण। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जो अज बेनतियां कीतियां प्यारियां ने, आप सब ने मननियां हन। प्यारियो, ये सब दा सांझा स्थान है, अपने प्यारे सतगुरु जी दे दरबार दी मर्यादा, दरबार दा सत्कार, जे असी धीआं पुत्तर नहीं बना के रखांगे ते कौन रखेगा। महाराज जी कृपा करन, आप जी सभना नू चढ़दी कला बख्शन, ते गुरु प्यारी साध संगत जीओ, बोलदिआं कोई लफ्ज आप जी दी शान दे खिलाफ बोलिया गया होवे, कोई उच्चा कोई नीवा कोई वाधा कोई घाटा, वह साडी झोली विच पा देना। आप जी ने सतगुरु जी दे प्रेम नू मानना, चढ़दी कला दे नाल जीवन जिउणा, ते सतगुरु जी दे बचन कमा के गुरमुख सोई सहज समाए वाली खेल खेडनी। फुल्लां बख्शदे होए गज के फतेह बुलाओ जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत्कार जो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी नू कथा विचार इतिहास सरवण करवा रहे सन। सत्कार योग भाई निशान सिंह जी आस्ट्रेलिया वाले, भाई निशान सिंह जी का संगत वालों बहुत बहुत धन्यवाद। अज आप जी का गुरमत फेरी का इस बार का लास्ट दवान से, सतगुरु अगे महाराज अगर अरदास बेनती है, महाराज इस तरह ही आप जी नू मेहर भरिया हथ रखण, जो सिखी दे प्रचार प्रसार वास्ते संगतां विच विचरदे रहण। हुण असीं बेनती करदा गुरु घर के मुख वजीर भाई रणजीत सिंह जी उन्हां नू गुरु घर की चल रही मर्यादा के अनुसार भाई निशान सिंह जी नू सरोपा दी भेटा करवाउणगे, नाल संगत होर भी आ सकदी। दीप सिंह आ जाणा अकाल। एक बार फिर तो सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, हुण समा है ढाडी वारा का, हुण आप जी नूं ढाडी वारा सरवण करवाउण जा रहे हैं। सत्कार जो ज्ञानी भाई बलवीर सिंह जी बिहारीपुर वाले ते उन्हां दा ढाडी जथा, यह जथा संगत जी साडे कोल सितंबर दे महीने दीआं हाजरियां पाउणगे, ते आप जी ने जरूर ही लाहा लैणा ते नाल ही मान सत्कार करते रहना। आओ संगत जी, बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल ढाडी वारा सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

खबरां कन्नी सुन के सबदा सीना सण गया ए, सबदा लबदा लाशा खुद ही लाश बन गया ए, लबदा लबदा लाशा खुद ही लाश बन गया।

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जेस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिबजादे चाली मुखते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां। जिन्ना आप जी दा नाम जपिया वंड के छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। तन आरियां नाल चिराए गए बच्चियां दे टोटे टोटे करके। गलां विच हार पवाए सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे। खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता। जंडा नाल बन के साड़े गए देगा विच उबाले गए। पुठियां खल्ला लुहाइयां गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई। कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा स्वासा संग निभाही। तिना समूह शहीदां दी पावन पवित्र कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे। चित आवण का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछे आ रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी।

जिन हर हृदय नाम ना बसियो तिन मात की जय हर भांजा तिन सुनी देह फिर है बिन नावे ओए खप खप मुए करंजा मेरे मन जप राम नाम हर मजा हर हर कृपाल